0: कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी कहें, आइए दीवान खाना में चलें।
1: ये है आपका अपना प्रोग्राम दीवान खाना। आपके मेजबान हैं खलील शिराजी, खदीजा शाह और वसीमा आबिद।
2: प्रोग्राम दीवान खाना में तमाम सामईन को आदाब।
0: आया जुलाई का महीना, बहा चोटी से एड़ी तक पसीना।
2: गर्मी होगी तो पसीना जरूर आएगा वसीमा, किसी मौसम को भी वैसे बुरा नहीं कहना चाहिए।
1: और जुलाई का तो मुझे इंतजार था। सुना है जापान में जुलाई को यानी सातवें महीने की 7 तारीख को एक खास त्योहार मनाया जाता है जिसमें कोई रोमानवी दास्तान उससे वाबस्ता है।
2: अच्छा भाई अच्छा, अब पता चला कि शिराजी साहब तो बड़े रोमानवी हैं।
0: अरे शिराजी साहब, ये त्योहार है तानाबाता, जो जापानी कैलेंडर के एतबार से हर साल 7 जुलाई या फिर कुछ कुछ जगहों पर अगस्त में मनाया जाता है। अच्छा। इस त्योहार से कुछ पहले ही आपको जापान भर में तकरीबन हर जगह बांस की आरायशी टहनियां सजी नजर आएंगी।
2: जी, जिन पर कागज की छोटी छोटी पर्चियां आवेजा होंगी। लोग अपनी ख्वाहिशात, दिली मुरादें या तमन्नाएं कागज की इन पर्चियों पर लिखकर इस आरायशी टहनी पर लटका देते हैं।
1: अरे हाँ, कई दफातर और स्टोरों के दाखिली दरवाजों पर मैंने ऐसी आरायशी टहनियाँ देखी हैं जिन पर पर्चियाँ लटक रही थी।
0: अरे वाह, अब खलील साहब के लिए मैं खदीजा से फरमाइश करूँगी कि आप हमारे सामने के लिए, खलील साहब के लिए तानाबाता त्यौहार से मंसूब रोमान भरी कहानी तो सुनाएं जरा।
2: जरूर सुनाऊंगी, जरूर सुनाऊंगी, और ख़ास तौर पर तो शिराजी साहब के गोश गुजार करने के लिए।
1: जी जी।
2: तो सुनिए ख्वातीनो हजरात, तानाबाता त्यौहार का ताल्लुक जिस रोमान भरी दास्तान से है, उसके मरकजी किरदार आसमान के देवता की बेटी शहजादी ओरिहिमे और उसका महबूब हिकोबोशी है। शहजादी कपड़ा बुनने की माहिर थी जबकि हिकोबोशी चरवाहा था। ये दोनों अपनी शादी के बाद एक दूसरे में ऐसे मगन हुए कि अपने अपने पेशों से गफलत बरतने लगे। इस बात पर नाराज होकर ओरिहिमे के वालिद ने उन दोनों को जुदा करके उनके दरमियान कहकशां की दूरियां हायल कर दी। लेकिन फिर बाद अज़ां उन्हें साल में सिर्फ एक बार मुलाकात की इजाज़त मिली। अब साल के 7वें महीने का 7वां दिन उनकी मुलाकात का दिन है।
0: अरे वाह खदीजा, शुक्रिया। वैसे मैंने सुना है कि वीवर यानी बुनाई करने वाला सितारा और कोहड यानी चरवाहा सितारा 7 जुलाई को आसानी से आसमान पर कहकशां के आर पार देखे जा सकते हैं।
2: जी, ये दो सितारे एक मर्द और औरत की नुमाइंदगी करते हैं जिनके दरमियान कहकशां की दूरियां हायल हैं।
1: भाई जो भी हो, ये दास्तान आखिरकार मोहब्बत की कहानी बनकर सदियों से जिंदा है।
2: जी बिल्कुल, और अब जुलाई का महीना आते ही अक्सर दफातर, स्कूल, शॉपिंग मॉल्स वगैरह पर बांस की टहनियां रख दी जाती हैं और लोग पर्चियों पर अपनी तमन्नाएं लिखकर लटकाते हैं।
0: इन पर्चियों को जापानी जुबान में कहते हैं तंजाकू, और बाकी आप सुनाइए।
1: अच्छा खदीजा साहिबा, एक बात बताइए, चलिए सामीन से पूछ लेते हैं कि उन्हें पर्ची लटकाने का मौका मिले तो वो क्या लिखेंगे।
0: हाँ हाँ, वैसे एक बहुत पुरानी बात याद आ गई। हमारे एक सामे थे कमालिया पाकिस्तान से, जफरुल्ला ज़िया। उनको पता चला तानाबाता त्यौहार का, तो उन्होंने बड़ी दिलचस्प ख्वाहिश लिख के भेजी थी। आज जफरुल्ला ज़िया साहब या उनके कोई दोस्त हमारा प्रोग्राम सुन रहे हो तो हम उन सब से दरख्वास्त करेंगे कि हम आप सब के पैगाम के मुंतज़िर हैं।
1: वसीमा साहिबा, आप लोग तो सितारों का जिक्र करती जा रही हैं, मैं तो उस वक्त से शहजादी के वालिद के बारे में सोच रहा हूँ।
2: मानवी पंदे जो हुए भाई, उसको तो आप जालिम समाज कहेंगे तो जालिम समाज की बात कर रहे हैं आप।
0: अच्छा खदीजा, जालिम समाज से एक बड़ा दिलचस्प किस्सा याद आ गया जिससे आपको पता चलेगा कि हर समाज में ऐसा किरदार होता है।
2: वसीमा, फिर वो किस्सा मुझे जरूर सुनाओ, बल्कि सबको सुनाओ।
0: असल में एक लड़का किसी लड़की को पसंद करता था। लड़के के घर वालों को पता चला, उन्होंने बड़ा समझाया, बाज आ जाओ, ना करो, ना माना। लड़की के घर वालों को कहीं से पता चल गया, उन्होंने लड़के को पकड़ कर खूब पिटाई की, समझ लें सर्फ से धुलाई कर डाली। और उसके बाद घर वालों को पैगाम भेजा कि अपना लाडला उठा कर ले जाओ। कई दिनों बाद जब बरखुददार के जख्म जरा मुंदमिल हुए तो बड़ी बहन ने कहा, हमने मना भी किया था, तब क्यों ना माने, अब अच्छे रहे हो। लड़के ने बड़ा तारीखी जवाब दिया, कहता है, आपने आज तक इतनी अच्छी तरह कहाँ समझाया था। جیسے انہوں نے سمجھا دیا.
1: ہائے بیچارے کو مارا کیوں, ان کے درمیان بھی ایک آدھ کہکشاں ڈال دیتے.
2: کیا خوب قصہ سنا اور کیا خوب بات کی شرازی صاحب نے.
1: اب کچھ موسیقی کا اہتمام کرتے ہیں, تو آج سامعین کو کون سا گیت سنوائیں گے ہم؟
0: جناب گیت ہے خوشی زورا نو شیتا نو ڈسٹینس, یعنی تاروں بھرے آسمان تلے دوریاں. اسے پیش کرنے والے تین رکنی بینڈ کا نام ہے الفی. اس کے تینوں اراکین ہیں ماسارو ساکورائی, کونوسوکے ساکازاکی اور توشیہیکو تاکامی زاوا.
2: جاپان کی مشہور میجی گکوین یونیورسٹی کے کیمپس پر قائم ہونے والے اس بینڈ کے پہلے چار ارکان تھے. 1975 میں ایک رکن گروپ کو چھوڑ گیا تو یہ تین رکنی بینڈ رہ گیا. انہوں نے 1974 میں اپنا سنگل ڈیبیو کیا تھا.
1: 1983 میں اس گروپ کا سنگل میری این زبردست ہٹ ہوا. وہ آج تک جاپانی موسیقی کی دنیا کے نمایاں بینڈز میں سے ایک ہے
2: اور اب بھی کنسرٹ ٹورز اور تقریبات میں یہ لوگ سرگرم ہیں. 1998 میں ان کی نیو یارک اور پھر 1999 میں برلن میں بیرون ملک پرفارمنس کامیاب رہیں. 1986 میں خلیج ٹوکیو میں منقدع موسم گرما کے آؤٹ ڈور ایونٹ میں وہ پہلے جاپانی فنکار بنے جنہوں نے ایک ہی رات میں 100,000 افراد کو اپنی طرف متوجہ کیا.
0: 24 دسمبر 2018 کو انہیں گنیز ورلڈ ریکارڈ نے کانسائی ٹی وی کے اوساکا انٹرنیشنل ویمنز میراتھن کے لیے 1987 سے 2018 تک سب سے زیادہ 31 تھیم سانگز فراہم کرنے والا تسلیم کر لیا, جو بین الاقوامی کھیلوں کے اس ایونٹ کی ٹی وی براڈ کاسٹ کے لیے کسی سنگل آرٹسٹ کی طرف سے سب سے زیادہ تھیم سانگز کا ریکارڈ ہے.
1: اور 2017 میں انہوں نے 59ویں جاپان ریکارڈ ایوارڈز میں کانلے کی نامی پلاننگ ایوارڈ جیتا.
2: مالی سال 2025 میں انہیں ایجنسی فار کلچرل افیئرز کے کمشنر کی جانب سے خصوصی تعریفی سند دی گئی ہیں. یہ اعزاز جاپانی موسیقی کی ثقافت کے فروغ اور ترقی میں ان کی طویل مدتی موسیقی کی سرگرمیوں اور زبردست اثر و رسوخ کے ذریعے نمایاں کردار کی ادائیگی کے لیے دیا گیا. تاریخ میں پہلی بار کسی راک بینڈ کو

0: कशकशां लगी हो।
1: क्या करता
0: और वहाँ इन दिनों में तानाबाता के दिनों में शॉपिंग करने के लिए आने वाली खवातीन ने किमोनो पहना होगा, युकाता पहना होगा, तो उनको डिस्काउंट भी मिलना।
1: हम भी कुछ कर सकते हैं, मैं ख्याल में जाना पड़ेगा,
2: हम खुद ही लटक जाएंगे, इतना बड़ा तो है।
0: पर बड़ा सजा हुआ, बड़ी रोशनियां हैं। तो चलें अब क्या करें, इजाजत लेने का वक्त तो आन पहुंचा है, लेकिन इजाजत लेने से पहले सामिन को बताते चलते हैं कि जापानी बोलचाल के प्रोग्राम आइए जापानी बोलने का क्विज जापानी जुबान दानी अब शुरू हो चुका है।
1: आप हमारे होम पेज nhk.jp/urdu के तवस्सुत से इसमें शिरकत कर सकते हैं और इसी होम पेज के तवस्सुत से ईमेल रवाना कर सकते हैं। आप इसके जरिए प्रोग्राम सुनने के अलावा अपनी आरा भी रवाना कर सकते हैं। तो होम पेज है nhk.jp/urdu।
2: होम पेज nhk.jp/urdu पर सबसे नीचे मालूमात की सुर्खी तले एक लिंक है जिसका उनवान है हम आपकी आरा के मुंतजर हैं। इस्तेमाल की शरायत मंजूर होने की सूरत में हिदायत पर अमल करते हुए पैगाम रवाना कर दीजिए।
0: जी सामिन, तहरीरी पैगाम भिजवाएं, ऑडियो पैगाम भिजवाएं, वीडियो पैगाम भिजवाएं, हम मुंतजर हैं। अब NHK वर्ल्ड जापान के मेजबानों को इजाजत दीजिए।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 6 जुलाई सोमवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सक्कू और वरुण तोमर से सुने समाचार। जापान के मौसम अधिकारियों का कहना है कि एक स्थिर मौसमी वर्षा अग्र के कारण सोमवार को उत्तरी क्यूशु में भारी वर्षा जारी है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने दोपहर तक खासकर पश्चिमी जापान में मौसम अस्थिर रहने का अनुमान जताया। एजेंसी ने इस क्षेत्र में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की आशंका भी जताई। निवासियों से आग्रह किया जा रहा है कि वे निचले इलाकों में भूस्खलन और बाढ़ के प्रति अतिरिक्त सावधानी बरतें। एजेंसी का कहना है कि गर्म नम हवा पश्चिमी जापान के ऊपर ठहरे वर्षा अग्र की ओर बह रही है, जिससे सोमवार को उत्तरी क्यूशु पर वर्षा मेघ छाए रहे। कुमामोतो प्रीफेक्चर और अन्य जगहों पर सुबह के दौरान भारी बारिश हुई। सुबह 10:30 बजे तक के एक घंटे में नागासाकी प्रीफेक्चर के इकी हवाई अड्डे पर 33 मिलीमीटर, जबकि सागा प्रीफेक्चर के तोसु शहर में 29.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अधिकारियों का कहना है कि वर्षा अग्र सोमवार रात तक पश्चिमी जापान पर बना रहेगा। उनका ये भी कहना है कि उत्तरी क्यूशु में नम हवा का प्रवाह जारी रहने के कारण दोपहर तक मौसम अस्थिर रहेगा। इस क्षेत्र में कुछ स्थानों पर भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की आशंका है। एजेंसी ने यह भी चेतावनी दी है कि किंकी और तोकाई क्षेत्रों में शाम तक भारी बारिश हो सकती है। लंबे समय से जारी बारिश के कारण खासकर उत्तरी क्यूशु में मिट्टी ढीली पड़ गई है। एजेंसी ने लोगों को भूस्खलन, निचले इलाकों में बाढ़ और नदियों में बढ़ते जलस्तर के प्रति अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। साथ ही बिजली गिरने और तेज हवाओं व बवंडरों के प्रति भी चेतावनी जारी की गई है। वेनेजुएला सरकार का कहना है कि 24 जून को देश में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों के बाद से अब तक 3,000 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। सरकार ने रविवार को मृतकों की नवीनतम संख्या की घोषणा की। उसने बताया कि मृतकों की संख्या 3,342 हो गई है और 17,000 से अधिक लोग बेघर हो गए हैं। वेनेजुएला में मैग्नीट्यूड 7 से अधिक के 2 भूकंप आने के बाद से 10 दिन से अधिक का समय बीत चुका है। संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय का अनुमान है कि आवास और बुनियादी ढांचे को प्रत्यक्ष रूप से लगभग $37 अरब का नुकसान हो सकता है। देश इस चुनौती का सामना कर रहा है कि बेघर हुए लोगों की सहायता कैसे की जाए। जापान के अंतरिक्षयान हायाबुसा 2 ने अंतरिक्ष में अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ते हुए एक ग्रहिका का अवलोकन किया है। इस यान ने 6 साल पहले एक अन्य ग्रहिका से एकत्रित नमूनों का एक कैप्सूल पृथ्वी पर भेजा था। जापान अंतरिक्ष अन्वेषण एजेंसी जाक्सा का कहना है कि हायाबुसा 2 जापान समयानुसार रविवार शाम लगभग 6:30 बजे निर्धारित समय पर तोरीफुने ग्रहिका के पास से गुजरा। एजेंसी ने बताया कि यान द्वारा भेजे गए डेटा से पुष्टि होती है कि मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। तोरीफुने ग्रहिका के पास से यान की उड़ान हायाबुसा 2 विस्तारित मिशन का हिस्सा है, जो 2020 में तब शुरू हुआ था जब इस अंतरिक्ष यान ने रियुगु ग्रहिका से एकत्रित रेत और अन्य नमूनों से युक्त एक कैप्सूल धरती पर भेजा था। इस यान की 2031 में अपनी अंतिम लक्षित ग्रहिका पर पहुंचने की उम्मीद है। इस नवीनतम मिशन के दौरान हायाबुसा 2 के तोरीफुने के केंद्र से 800 मीटर की दूरी तक पहुंचने और 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की सापेक्ष गति से यात्रा करते हुए ग्रहिका की तस्वीरें लेने की उम्मीद थी। जाक्सा को उम्मीद है कि वो यान को उसकी तेज गति पर ग्रहिकाओं के करीब सटीक रूप से नियंत्रित करने की तकनीक हासिल कर लेगी। इसका उद्देश्य ग्रह रक्षा प्रयासों में योगदान देना है, जिसमें भविष्य में पृथ्वी से टकराने की संभावना वाली ग्रहिकाओं के प्रक्षेप पथ को बदलने के लिए यान का उपयोग करना शामिल है।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेई के तीन बेटे रविवार को राजधानी तेहरान में उनके अंतिम संस्कार के दूसरे दिन उपस्थित हुए, लेकिन मीडिया संस्थानों ने मुज्तबा खामेनेई के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं दी है, जो अपने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में देश के सर्वोच्च नेता बने हैं। सरकारी टेलीविज़न ने दिखाया कि जब खामेनेई के ताबूत को अंतिम संस्कार स्थल पर ले जाया जा रहा था तो तीनों बेटे रो रहे थे। इसके बाद तीनों ने ताबूत के पास बैठकर एक साथ प्रार्थना की। ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि मुज्तबा बृहस्पतिवार को खामेनेई का शव दफनाने के समय सार्वजनिक रूप से उपस्थित होंगे या नहीं। चीन के रक्षा मंत्रालय ने रविवार को बताया कि उसकी नौसेना इस महीने देश के पूर्वी शहर छिंगदाओ के निकट जलक्षेत्र और वायुक्षेत्र में रूसी नौसेना के साथ संयुक्त अभ्यास करेगी। मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास का उद्देश्य सुरक्षा चुनौतियों का मिलकर सामना करते हुए क्षेत्रीय शांति व स्थिरता की रक्षा करना है। मंत्रालय का ये भी कहना है कि अभ्यास के बाद दोनों देशों के कुछ नौसैनिक मिलकर प्रशांत महासागर के संबंधित क्षेत्रों में समुद्री गश्त लगाएंगे। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार इस अभ्यास में चीन के निर्देशित मिसाइल विध्वंसक और एक पनडुब्बी के साथ साथ रूस का एक विशाल निर्देशित मिसाइल युद्धपोत और एक पनडुब्बी भी हिस्सा लेंगे। संभावित परिस्थितियों की अवधारणा पर आधारित अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा दोनों देश टोही, मिसाइल रक्षा और समुद्री हमले के अभियानों जैसे अभ्यास करेंगे। दोनों देशों के कर्मी संबंधित जहाज़ों का दौरा भी करेंगे। दोनों देश 2012 से लगभग हर साल इस तरह के संयुक्त अभ्यास करते आए हैं। मध्यवर्ती जापान स्थित शिजुओका प्रीफेक्चर के हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट शहर इतो में रविवार को ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत में एक अनोखी टब दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये वार्षिक दौड़ साल के लगभग इसी समय इतो ओकावा नदी में आयोजित की जाती है।

0: स्थानीय लोगों और पर्यटकों सहित लगभग 270 लोगों ने इस दौड़ में हिस्सा लिया। कुछ प्रतिभागी फैंसी ड्रेस में आए, जबकि कुछ ने युकाता नामक ग्रीष्मकालीन किमोनो पहने हुए थे। दौड़ शुरू होने का संकेत मिलते ही लगभग 1 मीटर व्यास वाले टबों में बैठे लोगों ने चावल के बड़े पलटों जैसे दिखने वाले लकड़ी के चप्पू चलाते हुए नदी के बहाव की दिशा में लगभग 400 मीटर दौड़ पूरी करने की जी जान से कोशिश की। संतुलन बिगड़ने पर कुछ प्रतिभागियों के टब पलट गए, लेकिन दर्शकों के उत्साहवर्धन पर उन्होंने टब में वापस चढ़ने की कोशिश की। इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: NHK World Japan की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 19वें पाठ में दुकानदार को ये बताना सीखेंगे कि आप क्या खरीदने आए हैं।
1: ताम वियतनाम से आई विदेशी छात्रा है और हारूसान हाउस में रहती है। वो हारूसान हाउस के ही दूसरे निवासियों मिया और काइतो के साथ उत्तरी जापान में होक्काइडो जाने वाली है। होक्काइडो में बहुत ठंड पड़ती है। वहां जाने की तैयारी करने के लिए ताम और मिया दस्ताने खरीद रही हैं।
0: तो आइए सुनते हैं 19वें पाठ की बातचीत।
2: すみません。 手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。 いいですね。 これ、いくらですか？
3: 1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले ताम ने दुकानदार से कहा,
1: माफ कीजिए,
2: टेबुक्रो गा होशीन देसु गा,
1: दस्ताने चाहिए।
0: दुकानदार ने जवाब दिया,
3: टेबुक्रो वा कोचिरा देसु,
0: दस्ताने यहाँ हैं।
1: फिर मिया ने दस्तानों की एक जोड़ी दिखाते हुए कहा,
2: कोरे अत्तकासो,
1: ये गर्म लगते हैं।
0: ताम ने दस्ताने पहन कर देखे,
2: ई देसु ने,
1: अच्छे हैं।
2: कोरे इकुरा देसु का,
1: ये कितने के हैं?
0: दुकानदार ने बताया,
3: 1900 येन देसु,
0: 1900 येन के।
1: फिर ताम ने पूछा,
2: कार्ड वा त्सुकाएमासु का,
1: कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं?
0: तो दुकानदार ने उत्तर दिया,
3: हाई त्सुकाएमासु,
0: जी कर सकते हैं।
1: सर्दियों में होक्काइडो का तापमान अक्सर 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। ये दस्ताने ताम के बहुत काम आएंगे।
0: आज का मुख्य वाक्य है,
2: टेबुक्रो गा होशीन देसु गा,
0: यानी दस्ताने चाहिए। ये वाक्य याद करके आप दुकानदार को बता सकेंगे कि आप क्या खरीदना चाहते हैं।
1: इस वाक्य में
4: टेबुक्रो
1: का अर्थ है दस्ताने और
4: होशीन देसु गा
1: का मतलब है चाहिए।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपको कोई चीज खरीदनी हो और आप चाहते हो कि दुकानदार आपको वो चीज दिखाए, तो उस चीज के नाम के बाद लगाएं कारक
4: गा
0: और उसके बाद कहें
4: होशीन देसु गा, होशीन देसु गा।
1: बना है

0: विशेषण
1: होशी
0: यानी चाहिए के बाद
1: ですが
0: जोड़कर
1: ですが
0: का उपयोग अपनी बात समझाने और सुनने वाले से मदद का अनुरोध करने के लिए किया जाता है।
2: यहाँ ते बुकरो यानी दस्ताने के बाद आया है गा और उसके बाद होशीन देस गा, इसलिए वाक्य बना ते बुकरो गा होशीन देस गा यानी दस्ताने चाहिए।
0: तो सुनिए और दोहराइए। ध्यान रखिएगा कि वाक्य के अंतिम शब्द का सुर नीचे रखना है।
1: होशीन देस गा, टेबुकरो गा होशीन देस गा।
2: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक महिला कुछ खरीदना चाहती है।
3: すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
4: そうですね。このお菓子はいかがですか？
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
2: पहले महिला ने पूछा
3: すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
0: माफ कीजिए, 北海道का उपहार चाहिए।
2: का भाव है आ, और इसका उपयोग किसी को आवाज लगाने के लिए किया जा सकता है।
1: ओमियागे
2: का अर्थ है उपहार।
0: अगर आपको समझ ना आ रहा हो कि परिजनों या मित्रों के लिए जापान से क्या उपहार लेकर जाएं, तो आप दुकानदार से ये सवाल पूछकर उनकी सलाह ले सकते हैं। तो अब सुनते हैं कि जवाब में दुकानदार ने क्या कहा।
4: सो देसुने, कोनो ओकाशी वा इकागा देसु का?
2: अच्छा, ये मिठाई कैसी रहेगी?
0: इसमें
1: सो देसुने
0: का अर्थ है अच्छा। इसका इस्तेमाल जवाब सोचते समय किया जाता है।
1: कोनो ओकाशी
0: का मतलब है ये मिठाई और
1: इकागा देसु
0: का अर्थ है कैसी रहेगी।
2: तो अब वाक्य सुनिए और साथ साथ बोलने का अभ्यास कीजिए।
1: ओमियागे गा होशी इन देसु गा। हुक्काइडो नो ओमियागे गा होशी इन देसु गा। अनो सुमिमासेन, हुक्काइडो नो ओमियागे गा होशी इन देसु गा।
0: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप सामान बांधने का पारंपरिक जापानी कपड़ा यानी
1: फुरोशिकी
0: खरीदना चाहते हैं, तो दुकानदार को ये कैसे बताएंगे?
5: すみません, फुरोशिकी गा होशी इन देसु गा।
2: अब मान लीजिए कि आप शहर में टहल रहे हैं और अचानक बारिश होने लगी। आप एक कन्वीनियंस स्टोर में चले गए और दुकानदार से ये कहना चाहते हैं कि आपको छाता चाहिए। छाते को जापानी भाषा में कहते हैं
1: कासा।
2: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
4: अनो सुमिमासेन, कासा गा होशी इन देसु गा।
0: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो ताम की पंक्ति है। आप भी इसे याद कर लीजिए।
5: कार्ड वा त्स्काएमासु का?
1: कार्ड वा त्स्काएमासु का?
2: का अर्थ है कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: इसमें
1: कार्ड
0: का मतलब है क्रेडिट कार्ड। पूरे शब्द का उच्चारण है
1: क्रेडिटो कार्ड।
0: आप अपना कार्ड दिखाते हुए ये भी कह सकते हैं
1: कोनो कार्ड वा त्स्काएमासु का,
0: यानी इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
2: तो आप भी ये वाक्य बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
1: कार्ड वा त्स्काएमासु का?
0: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
5: अनो सुमिमासेन, टेबुकुरो गा होशी इन देसु गा।
6: टेबुकुरो वा कोचिरा देसु।
5: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか？
6: 1900円です。
5: カードは

0: えますか？
1: はい、使えます。
2: ハルさんの知恵袋。
3: अब सुनिए हारू जी की सलाह, जिसमें हम आज बात करेंगे जापान में क्रेडिट कार्ड के उपयोग की।
4: जापान में आप होटलों, डिपार्टमेंट स्टोरों और ऑनलाइन खरीदारी में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी दुकानें ऐसी भी हैं जहां इन्हें स्वीकार नहीं किया जाता।
3: हालांकि इन दिनों क्रेडिट कार्ड और कैशलेस यानी नकद रहित भुगतान करने के तरीके आम होते जा रहे हैं, मगर कम आबादी वाले क्षेत्रों में बहुत सारी छोटी दुकानें और अन्य सुविधाएं केवल नकदी ही लेती हैं, जिससे विदेशी पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
4: वैसे क्रेडिट कार्ड स्वीकार करने वाली दुकानों की संख्या बढ़ रही है। कुछ ऐसे एटीएम भी हैं जिनसे आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके जापानी येन निकाल सकते हैं। आमतौर पर डाकघरों और कन्वीनियंस स्टोरों में एटीएम होते हैं और उनमें विदेशी कार्ड भी चलते हैं।
3: फिर भी जापान में घूमते समय नकदी साथ रखना अच्छा है। ये जानकारी भी पहले से इकट्ठा कर लेना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड का उपयोग कहाँ हो सकता है और कहाँ नहीं।
4: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
3: अगले पाठ में ताम अपने दोस्तों के साथ होक्काइडो जाएंगी। तब तक के लिए सायोनारा।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 6 जुलाई सोमवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सक्कू और वरुण तोमर से सुने समाचार। जापान के मौसम अधिकारियों का कहना है कि एक स्थिर मौसमी वर्षा अग्र के कारण सोमवार को उत्तरी क्यूशू में भारी वर्षा जारी है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने दोपहर तक खासकर पश्चिमी जापान में मौसम अस्थिर रहने का अनुमान जताया। एजेंसी ने इस क्षेत्र में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की आशंका भी जताई। निवासियों से आग्रह किया जा रहा है कि वे निचले इलाकों में भूस्खलन और बाढ़ के प्रति अतिरिक्त सावधानी बरतें। एजेंसी का कहना है कि गर्म नम हवा पश्चिमी जापान के ऊपर ठहरे वर्षा अग्र की ओर बह रही है, जिससे सोमवार को उत्तरी क्यूशू पर वर्षा मेघ छाए रहे। कुमामोतो प्रीफेक्चर और अन्य जगहों पर सुबह के दौरान भारी बारिश हुई। सुबह 10:30 बजे तक के एक घंटे में नागासाकी प्रीफेक्चर के इकी हवाई अड्डे पर 33 मिलीमीटर, जबकि सागा प्रीफेक्चर के तोसू शहर में 29.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अधिकारियों का कहना है कि वर्षा अग्र सोमवार रात तक पश्चिमी जापान पर बना रहेगा। उनका ये भी कहना है कि उत्तरी क्यूशू में नम हवा का प्रवाह जारी रहने के कारण दोपहर तक मौसम अस्थिर रहेगा। इस क्षेत्र में कुछ स्थानों पर भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की आशंका है। एजेंसी ने यह भी चेतावनी दी है कि किंकी और तोकाई क्षेत्रों में शाम तक भारी बारिश हो सकती है। लंबे समय से जारी बारिश के कारण खासकर उत्तरी क्यूशू में मिट्टी ढीली पड़ गई है। एजेंसी ने लोगों को भूस्खलन, निचले इलाकों में बाढ़ और नदियों में बढ़ते जलस्तर के प्रति अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। साथ ही बिजली गिरने और तेज हवाओं व बवंडरों के प्रति भी चेतावनी जारी की गई है। वेनेजुएला सरकार का कहना है कि 24 जून को देश में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों के बाद से अब तक 3,000 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। सरकार ने रविवार को मृतकों की नवीनतम संख्या की घोषणा की। उसने बताया कि मृतकों की संख्या 3,342 हो गई है और 17,000 से अधिक लोग बेघर हो गए हैं। वेनेजुएला में मैग्नीट्यूड 7 से अधिक के 2 भूकंप आने के बाद से 10 दिन से अधिक का समय बीत चुका है। संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय का अनुमान है कि आवास और बुनियादी ढांचे को प्रत्यक्ष रूप से लगभग $37 अरब का नुकसान हो सकता है। देश इस चुनौती का सामना कर रहा है कि बेघर हुए लोगों की सहायता कैसे की जाए। जापान के अंतरिक्षयान हायाबुसा 2 ने अंतरिक्ष में अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ते हुए एक ग्रहिका का अवलोकन किया है। इस यान ने 6 साल पहले एक अन्य ग्रहिका से एकत्रित नमूनों का एक कैप्सूल पृथ्वी पर भेजा था। जापान अंतरिक्ष अन्वेषण एजेंसी जाक्सा का कहना है कि हायाबुसा 2 जापान समयानुसार रविवार शाम लगभग 6:30 बजे निर्धारित समय पर तोरीफुने ग्रहिका के पास से गुजरा। एजेंसी ने बताया कि यान द्वारा भेजे गए डेटा से पुष्टि होती है कि मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। तोरीफुने ग्रहिका के पास से यान की उड़ान हायाबुसा 2 विस्तारित मिशन का हिस्सा है, जो 2020 में तब शुरू हुआ था जब इस अंतरिक्ष यान ने रियुगू ग्रहिका से एकत्रित रेत और अन्य नमूनों से युक्त एक कैप्सूल धरती पर भेजा था। इस यान की 2031 में अपनी अंतिम लक्षित ग्रहिका पर पहुंचने की उम्मीद है। इस नवीनतम मिशन के दौरान हायाबुसा 2 के तोरीफुने के केंद्र से 800 मीटर की दूरी तक पहुंचने और 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की सापेक्ष गति से यात्रा करते हुए ग्रहिका की तस्वीरें लेने की उम्मीद थी। जाक्सा को उम्मीद है कि वो यान को उसकी तेज गति पर ग्रहिकाओं के करीब सटीक रूप से नियंत्रित करने की तकनीक हासिल कर लेगी। इसका उद्देश्य ग्रह रक्षा प्रयासों में योगदान देना है, जिसमें भविष्य में पृथ्वी से टकराने की संभावना वाली ग्रहिकाओं के प्रक्षेप पथ को बदलने के लिए यान का उपयोग करना शामिल है।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेई के तीन बेटे रविवार को राजधानी तेहरान में उनके अंतिम संस्कार के दूसरे दिन उपस्थित हुए, लेकिन मीडिया संस्थानों ने मुज्तबा खामेनेई के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं दी है, जो अपने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में देश के सर्वोच्च नेता बने हैं। सरकारी टेलीविज़न ने दिखाया कि जब खामेनेई के ताबूत को अंतिम संस्कार स्थल पर ले जाया जा रहा था तो तीनों बेटे रो रहे थे। इसके बाद तीनों ने ताबूत के पास बैठकर एक साथ प्रार्थना की। ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि मुज्तबा बृहस्पतिवार को खामेनेई का शव दफनाने के समय सार्वजनिक रूप से उपस्थित होंगे या नहीं। चीन के रक्षा मंत्रालय ने रविवार को बताया कि उसकी नौसेना इस महीने देश के पूर्वी शहर छिंगदाओ के निकट जल क्षेत्र और वायु क्षेत्र में रूसी नौसेना के साथ संयुक्त अभ्यास करेगी। मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास का उद्देश्य सुरक्षा चुनौतियों का मिलकर सामना करते हुए क्षेत्रीय शांति व स्थिरता की रक्षा करना है। मंत्रालय का ये भी कहना है कि अभ्यास के बाद दोनों देशों के कुछ नौसैनिक मिलकर प्रशांत महासागर के संबंधित क्षेत्रों में समुद्री गश्त लगाएंगे। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार इस अभ्यास में चीन के निर्देशित मिसाइल विध्वंसक और एक पनडुब्बी के साथ साथ रूस का एक विशाल निर्देशित मिसाइल युद्धपोत और एक पनडुब्बी भी हिस्सा लेंगे। संभावित परिस्थितियों की अवधारणा पर आधारित अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा दोनों देश टोही, मिसाइल रक्षा और समुद्री हमले के अभियानों जैसे अभ्यास करेंगे। दोनों देशों के कर्मी संबंधित जहाज़ों का दौरा भी करेंगे। दोनों देश 2012 से लगभग हर साल इस तरह के संयुक्त अभ्यास करते आए हैं। मध्यवर्ती जापान स्थित शिजुओका प्रीफेक्चर के हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट शहर इतो में रविवार को ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत में एक अनोखी टब दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये वार्षिक दौड़ साल के लगभग इसी समय इतो ओकावा नदी में आयोजित की जाती है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों सहित लगभग 270 लोगों ने इस दौड़ में हिस्सा लिया। कुछ प्रतिभागी फैंसी ड्रेस में आए, जबकि कुछ ने युकाता नामक ग्रीष्मकालीन किमोनो पहने हुए थे। दौड़ शुरू होने का संकेत मिलते ही लगभग 1 मीटर व्यास वाले टबों में बैठे लोगों ने चावल के बड़े पलटों जैसे दिखने वाले लकड़ी के चप्पू चलाते हुए नदी के बहाव की दिशा में लगभग 400 मीटर दौड़ पूरी करने की जी जान से कोशिश की। संतुलन बिगड़ने पर कुछ प्रतिभागियों के टब पलट गए, लेकिन दर्शकों के उत्साहवर्धन पर उन्होंने टब में वापस चढ़ने की कोशिश की। इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है। ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: NHK World Japan की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 19वें पाठ में दुकानदार को ये बताना सीखेंगे कि आप क्या खरीदने आए हैं।
1: ताम वियतनाम से आई विदेशी छात्रा है और हारूसान हाउस में रहती है। वो हारूसान हाउस के ही दूसरे निवासियों मिया और काइतो के साथ उत्तरी जापान में होक्काइडो जाने वाली है। होक्काइडो में बहुत ठंड पड़ती है। वहाँ जाने की तैयारी करने के लिए ताम और मिया दस्ताने खरीद रही हैं।
0: तो आइए सुनते हैं 19वें पाठ की बातचीत।
2: すみません。 手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。 いいですね。 これ、いくらですか？
3: 1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले ताम ने दुकानदार से कहा,
1: माफ कीजिए,
2: टेबुक्रो गा होशीन देसु गा,
1: दस्ताने चाहिए।
0: दुकानदार ने जवाब दिया,
3: टेबुक्रो वा कोचिरा देसु,
0: दस्ताने यहाँ हैं।
1: फिर मिया ने दस्तानों की एक जोड़ी दिखाते हुए कहा,
2: कोरे अत्तकासो,
1: ये गर्म लगते हैं।
0: ताम ने दस्ताने पहन कर देखे,
2: ई देसु ने,
1: अच्छे हैं।
2: कोरे इकुरा देसु का,
1: ये कितने के हैं?
0: दुकानदार ने बताया,
3: 1900 येन देसु,
0: 1900 येन के।
1: फिर ताम ने पूछा,
2: कार्ड वा त्सुकाएमासु का,
1: कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं?
0: तो दुकानदार ने उत्तर दिया,
3: हाई त्सुकाएमासु,
0: जी कर सकते हैं।
1: सर्दियों में होक्काइडो का तापमान अक्सर 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। ये दस्ताने ताम के बहुत काम आएंगे।
0: आज का मुख्य वाक्य है,
2: टेबुक्रो गा होशीन देसु गा,
0: यानी दस्ताने चाहिए। ये वाक्य याद करके आप दुकानदार को बता सकेंगे कि आप क्या खरीदना चाहते हैं।
1: इस वाक्य में
4: टेबुक्रो
1: का अर्थ है दस्ताने और
4: होशीन देसु गा
1: का मतलब है चाहिए।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आपको कोई चीज खरीदनी हो और आप चाहते हो कि दुकानदार आपको वो चीज दिखाए, तो उस चीज के नाम के बाद लगाएं कारक
4: गा
0: और उसके बाद कहें
4: होशीन देसु गा, होशीन देसु गा।
1: बना है ई विशेषण
4: होशी
1: यानी चाहिए के बाद
4: देसु गा
1: जोड़कर
4: देसु गा
1: का उपयोग अपनी बात समझाने और सुनने वाले से मदद का अनुरोध करने के लिए किया जाता है।
0: यहाँ तेबुक्रो यानी दस्ताने के बाद आया है गा और उसके बाद होशीन देसु गा, इसलिए वाक्य बना तेबुक्रो गा होशीन देसु गा, यानी दस्ताने चाहिए।
1: तो सुनिए और दोहराइए। ध्यान रखिएगा कि वाक्य के अंतिम शब्द का सुर नीचे रखना है।
4: होशीन देसु गा, टेबुक्रो गा होशीन देसु गा।
0: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक महिला कुछ खरीदना चाहती है।
5: すみません。 北海道のお土産が欲しいんですが。
6: そうですね。 このお菓子はいかがですか?
1: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
0: पहले महिला ने पूछा,
5: すみません。 北海道のお土産が欲しいんですが。
1: माफ कीजिए, होक्काइडो का उपहार चाहिए।
0: का भाव है और इसका उपयोग किसी को आवाज लगाने के लिए किया जा सकता है।
4: ओमियागे
0: का अर्थ है उपहार।
1: अगर आपको समझ ना आ रहा हो कि परिजनों या मित्रों के लिए जापान से क्या उपहार लेकर जाएं, तो आप दुकानदार से ये सवाल पूछकर उनकी सलाह ले सकते हैं। तो अब सुनते हैं कि जवाब में दुकानदार ने क्या कहा।
6: そうですね。このお菓子はいかがですか？
0: あっちゃ、ये मिठाई कैसी रहेगी?
1: इसमें?
4: そうですね。
1: का अर्थ है अच्छा। इसका इस्तेमाल जवाब सोचते समय किया जाता है।
4: このお菓子
1: का मतलब है ये मिठाई और
4: いかがですか?
1: का अर्थ है कैसी रहेगी?
0: तो अब वाक्य सुनिए और साथ साथ बोलने का अभ्यास कीजिए।
4: お土産が欲しいんですが。北海道のお土産が欲しいんですが。すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप सामान बांधने का पारंपरिक जापानी कपड़ा यानी
4: फुरोशिकी
1: खरीदना चाहते हैं, तो दुकानदार को ये कैसे बताएंगे?
2: すみません, फुरोशिकी गा होशी इन देसु गा।
0: अब मान लीजिए कि आप शहर में टहल रहे हैं और अचानक बारिश होने लगी। आप एक कन्वीनियंस स्टोर में चले गए और दुकानदार से ये कहना चाहते हैं कि आपको छाता चाहिए। छाते को जापानी भाषा में कहते हैं
4: कासा।
0: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
6: すみません, कासा गा होशी इन देसु गा।
1: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो ताम की पंक्ति है। आप भी इसे याद कर लीजिए।
2: कार्ड वा स्काएमास्का?
4: कार्ड वा स्काएमास्का?
0: का अर्थ है कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: इसमें
4: कार्ड
1: का मतलब है क्रेडिट कार्ड। पूरे शब्द का उच्चारण है
4: क्रेडिट कार्ड।
1: आप अपना कार्ड दिखाते हुए ये भी कह सकते हैं
4: कोनो कार्ड वा स्काएमास्का,
1: यानी इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: तो आप भी ये वाक्य बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
4: कार्ड वा स्काएमास्का?
1: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
2: すみません, 手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ?1900 円です。
2: カードは使えますか?
3: はい、使えます。
7: ハルさんの知恵袋。
0: अब सुनिए हारू जी की सलाह, जिसमें हम आज बात करेंगे जापान में क्रेडिट कार्ड के उपयोग की।
1: जापान में आप होटलों, डिपार्टमेंट स्टोरों और ऑनलाइन खरीदारी में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी दुकानें ऐसी भी हैं जहां इन्हें स्वीकार नहीं किया जाता।
0: हालांकि इन दिनों क्रेडिट कार्ड और कैशलेस यानी नकद रहित भुगतान करने के तरीके आम होते जा रहे हैं।

0: मगर कम आबादी वाले क्षेत्रों में बहुत सारी छोटी दुकानें और अन्य सुविधाएं केवल नकदी ही लेती हैं, जिससे विदेशी पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
1: वैसे क्रेडिट कार्ड स्वीकार करने वाली दुकानों की संख्या बढ़ रही है। कुछ ऐसे ATM भी हैं जिनसे आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके जापानी येन निकाल सकते हैं। आमतौर पर डाकघरों और कन्वीनियंस स्टोरों में ATM होते हैं और उनमें विदेशी कार्ड भी चलते हैं।
0: फिर भी जापान में घूमते समय नकदी साथ रखना अच्छा है। ये जानकारी भी पहले से इकट्ठा कर लेना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड का उपयोग कहाँ हो सकता है और कहाँ नहीं।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम अपने दोस्तों के साथ होक्काइदो जाएंगी। तब तक के लिए सायोनारा।

0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब कुछ मजीद खबरें। ईरान के मरहूम रहबर आला आयतुल्ला अली खामनाई के तीन बेटों ने इतवार को दारुलहुकूमत तेहरान में उनकी आखिरी रसूमात के दूसरे दिन शिरकत की, लेकिन ज़राए इब्लाग के इदारों ने उनके बेटे मुश्तबा खामनाई के बारे में कोई खबर नहीं दी, जो अपने वालिद के बाद मुल्की रहबर आला के मनसब पर फाइज हुए हैं। सरकारी टेलीविजन ने तीनों बेटों को रोते हुए दिखाया जब उनके वालिद का ताबूत जनाजे के मकाम पर ले जाया गया। फिर तीनों ने मिलकर ताबूत के पास नमाज अदा की। अब तवज्जो इस बात पर है कि आया मुश्तबा जुमेरात को अपने वालिद की तदफीन के मौके पर अवाम के सामने आएंगे या नहीं। चीन की वजारत दिफा ने इतवार को कहा कि मुल्क की बहरिया इस माह रूसी बहरिया के साथ चीन के मशरकी शहर चिंगदाओ के करीब बहरी और फजाई हदूद में मुश्तरका मश्क करेगी। वजारत ने कहा कि मश्क का मकसद मुश्तरका तौर पर सिक्योरिटी चैलेंजेस का जवाब देना और इलाकाई अमन इस्तेकाम की हिफाजत करना है। वजारत ने कहा कि मश्क के बाद दोनों अतराफ की कुछ अफवाज बहरुल काहिल के मुतल्लिका इलाकों में मुश्तरका समंदरी गश्त करेंगी। सरकारी शिनहुआ न्यूज एजेंसी का कहना है कि मश्क में हिस्सा लेने वाले जहाजों में चीन के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और एक आबदोज के अलावा एक रूसी गाइडेड मिसाइल क्रूजर और एक आबदोज शामिल हैं। दोनों फरीक दूसरे तरबियती मंजरनामों के अलावा मुश्तरका जासूसी मिसाइल दिफा और मैरीटाइम स्ट्राइक ऑप्शंस माफ कीजिएगा ऑपरेशंस करेंगे। दोनों अतराफ के अहलकार मुतलिका बहरी जहाजों के दौरों का भी एहतमाम करेंगे। दोनों ममालिक 2012 से तकरीबन हर साल मुश्तरका मशकें करते आए हैं। इतवार के रोज वस्ती जापान के शिजुओका प्रीफेक्चर के एक गर्म चश्मा तफरी शहर इतो में मौसम गर्मा के आगाज के एक मुनफरिद इवेंट वॉश टब रेस का इनेकाद किया गया। ये इवेंट हर साल तकरीबन इन्हीं दिनों दरियाए इतो ओकावा पर मुनक़िद होता है। रेस में मकामी अफराद और सयाहों समेत तकरीबन 270 अफराद ने हिस्सा लिया। कुछ शुरका ने आम मलबूसात पहने हुए थे जबकि दीगर मौसम गर्मा के किमोनों में मलबूस थे, जिसे युकाता कहा जाता है। तकरीबन 1 मीटर कुतर के टबों में बैठे हुए शुरका इब्तदाई इशारा मिलने पर रवाना हुए और चावल के बड़े पतीलों से मिलते जुलते टबों को लकड़ी के बड़े चप्पुओं के साथ चलाते हुए 400 मीटर नीचे की तरफ फिनिश लाइन तक गए। जब कुछ शुरका अपना तवाजुन खो बैठे और उलट गए, फिर अपने टबों में वापस चढ़ने के लिए जिद्दोजहद करते रहे तो तमाशाइयों ने उन्हें दाद दी।
1: अब आज की चंद अहम खबरों की सुर्खियां समाप्त फरमा लीजिए। जापान के महकमे मौसमियात का कहना है कि मौसमी बारिशों के एक ठहरे हुए निजाम के बायस पीर के रोज शुमाली क्यूशो में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी रहा। वेनेजुएला की हुकूमत का कहना है कि 24 जून को मुल्क में आए दो शदीद जल्जलों के बाद से अब तक 3,000 से ज्यादा अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। जापान के खलाई तहकीक के मिशन हायाबुसा 2 ने खला में अपनी अगली मंजिल की तरफ जाते हुए एक सियारचे का दोहराने परवाज मुशाहिदा मुकम्मल कर लिया है। एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और वीडियोस के लिए हमारी वेबसाइट है nhk.jp/urdu।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 6 जुलाई सोमवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सक्कू और वरुण तोमर से सुने समाचार। जापान के मौसम अधिकारियों का कहना है कि एक स्थिर मौसमी वर्षा अग्र के कारण सोमवार को उत्तरी क्यूशु में भारी वर्षा जारी है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने दोपहर तक खासकर पश्चिमी जापान में मौसम अस्थिर रहने का अनुमान जताया। एजेंसी ने इस क्षेत्र में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की आशंका भी जताई। निवासियों से आग्रह किया जा रहा है कि वे निचले इलाकों में भूस्खलन और बाढ़ के प्रति अतिरिक्त सावधानी बरतें। एजेंसी का कहना है कि गर्म नम हवा पश्चिमी जापान के ऊपर ठहरे वर्षा अग्र की ओर बह रही है, जिससे सोमवार को उत्तरी क्यूशु पर वर्षा मेघ छाए रहे। कुमामोतो प्रीफेक्चर और अन्य जगहों पर सुबह के दौरान भारी बारिश हुई। सुबह 10:30 बजे तक के एक घंटे में नागासाकी प्रीफेक्चर के इकी हवाई अड्डे पर 33 मिलीमीटर, जबकि सागा प्रीफेक्चर के तोसु शहर में 29.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अधिकारियों का कहना है कि वर्षा अग्र सोमवार रात तक पश्चिमी जापान पर बना रहेगा। उनका ये भी कहना है कि उत्तरी क्यूशु में नम हवा का प्रवाह जारी रहने के कारण दोपहर तक मौसम अस्थिर रहेगा। इस क्षेत्र में कुछ स्थानों पर भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की आशंका है। एजेंसी ने यह भी चेतावनी दी है कि किंकी और तोकाई क्षेत्रों में शाम तक भारी बारिश हो सकती है। लंबे समय से जारी बारिश के कारण खासकर उत्तरी क्यूशु में मिट्टी ढीली पड़ गई है। एजेंसी ने लोगों को भूस्खलन, निचले इलाकों में बाढ़ और नदियों में बढ़ते जलस्तर के प्रति अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। साथ ही बिजली गिरने और तेज हवाओं व बवंडरों के प्रति भी चेतावनी जारी की गई है। वेनेजुएला सरकार का कहना है कि 24 जून को देश में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों के बाद से अब तक 3,000 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। सरकार ने रविवार को मृतकों की नवीनतम संख्या की घोषणा की। उसने बताया कि मृतकों की संख्या 3,342 हो गई है और 17,000 से अधिक लोग बेघर हो गए हैं। वेनेजुएला में मैग्नीट्यूड 7 से अधिक के 2 भूकंप आने के बाद से 10 दिन से अधिक का समय बीत चुका है। संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय का अनुमान है कि आवास और बुनियादी ढांचे को प्रत्यक्ष रूप से लगभग $37 अरब का नुकसान हो सकता है। देश इस चुनौती का सामना कर रहा है कि बेघर हुए लोगों की सहायता कैसे की जाए। जापान के अंतरिक्षयान हायाबुसा 2 ने अंतरिक्ष में अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ते हुए एक ग्रहिका का अवलोकन किया है। इस यान ने 6 साल पहले एक अन्य ग्रहिका से एकत्रित नमूनों का एक कैप्सूल पृथ्वी पर भेजा था। जापान अंतरिक्ष अन्वेषण एजेंसी जाक्सा का कहना है कि हायाबुसा 2 जापान समयानुसार रविवार शाम लगभग 6:30 बजे निर्धारित समय पर तोरीफुने ग्रहिका के पास से गुजरा। एजेंसी ने बताया कि यान द्वारा भेजे गए डेटा से पुष्टि होती है कि मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। तोरीफुने ग्रहिका के पास से यान की उड़ान हायाबुसा 2 विस्तारित मिशन का हिस्सा है, जो 2020 में तब शुरू हुआ था जब इस अंतरिक्ष यान ने रियुगु ग्रहिका से एकत्रित रेत और अन्य नमूनों से युक्त एक कैप्सूल धरती पर भेजा था। इस यान की 2031 में अपनी अंतिम लक्षित ग्रहिका पर पहुंचने की उम्मीद है। इस नवीनतम मिशन के दौरान हायाबुसा 2 के तोरीफुने के केंद्र से 800 मीटर की दूरी तक पहुंचने और 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की सापेक्ष गति से यात्रा करते हुए ग्रहिका की तस्वीरें लेने की उम्मीद थी। जाक्सा को उम्मीद है कि वो यान को उसकी तेज गति पर ग्रहिकाओं के करीब सटीक रूप से नियंत्रित करने की तकनीक हासिल कर लेगी। इसका उद्देश्य ग्रह रक्षा प्रयासों में योगदान देना है, जिसमें भविष्य में पृथ्वी से टकराने की संभावना वाली ग्रहिकाओं के प्रक्षेप पथ को बदलने के लिए यान का उपयोग करना शामिल है।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेई के तीन बेटे रविवार को राजधानी तेहरान में उनके अंतिम संस्कार के दूसरे दिन उपस्थित हुए, लेकिन मीडिया संस्थानों ने मुज्तबा खामेनेई के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं दी है, जो अपने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में देश के सर्वोच्च नेता बने हैं। सरकारी टेलीविज़न ने दिखाया कि जब खामेनेई के ताबूत को अंतिम संस्कार स्थल पर ले जाया जा रहा था तो तीनों बेटे रो रहे थे। इसके बाद तीनों ने ताबूत के पास बैठकर एक साथ प्रार्थना की। ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि मुज्तबा बृहस्पतिवार को खामेनेई का शव दफनाने के समय सार्वजनिक रूप से उपस्थित होंगे या नहीं। चीन के रक्षा मंत्रालय ने रविवार को बताया कि उसकी नौसेना इस महीने देश के पूर्वी शहर छिंगदाओ के निकट जलक्षेत्र और वायुक्षेत्र में रूसी नौसेना के साथ संयुक्त अभ्यास करेगी। मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास का उद्देश्य सुरक्षा चुनौतियों का मिलकर सामना करते हुए क्षेत्रीय शांति व स्थिरता की रक्षा करना है। मंत्रालय का यह भी कहना है कि अभ्यास के बाद दोनों देशों के कुछ नौसैनिक मिलकर प्रशांत महासागर के संबंधित क्षेत्रों में समुद्री गश्त लगाएंगे। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार इस अभ्यास में चीन के निर्देशित मिसाइल विध्वंसक और एक पनडुब्बी के साथ साथ रूस का एक विशाल निर्देशित मिसाइल युद्धपोत और एक पनडुब्बी भी हिस्सा लेंगे। संभावित परिस्थितियों की अवधारणा पर आधारित अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा दोनों देश टोही, मिसाइल रक्षा और समुद्री हमले के अभियानों जैसे अभ्यास करेंगे। दोनों देशों के कर्मी संबंधित जहाज़ों का दौरा भी करेंगे। दोनों देश 2012 से लगभग हर साल इस तरह के संयुक्त अभ्यास करते आए हैं। मध्यवर्ती जापान स्थित शिजुओका प्रीफेक्चर के हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट शहर इतो में रविवार को ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत में एक अनोखी टब दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये वार्षिक दौड़ साल के लगभग इसी समय इतो ओकावा नदी में आयोजित की जाती है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों सहित लगभग 270 लोगों ने इस दौड़ में हिस्सा लिया। कुछ प्रतिभागी फैंसी ड्रेस में आए, जबकि कुछ ने युकाता नामक ग्रीष्मकालीन किमोनो पहने हुए थे। दौड़ शुरू होने का संकेत मिलते ही लगभग 1 मीटर व्यास वाले टबों में बैठे लोगों ने चावल के बड़े पलटों जैसे दिखने वाले लकड़ी के चप्पू चलाते हुए नदी के बहाव की दिशा में लगभग 400 मीटर दौड़ पूरी करने की जी जान से कोशिश की। संतुलन बिगड़ने पर कुछ प्रतिभागियों के टब पलट गए, लेकिन दर्शकों के उत्साहवर्धन पर उन्होंने टब में वापस चढ़ने की कोशिश की। इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है। ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।

0: NHK World Japan की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 19वें पाठ में दुकानदार को ये बताना सीखेंगे कि आप क्या खरीदने आए हैं।
1: ताम वियतनाम से आई विदेशी छात्रा है और हारूसान हाउस में रहती है। वो हारूसान हाउस के ही दूसरे निवासियों मिया और काइतो के साथ उत्तरी जापान में होक्काइडो जाने वाली है। होक्काइडो में बहुत ठंड पड़ती है। वहां जाने की तैयारी करने के लिए ताम और मिया दस्ताने खरीद रही हैं।
0: तो आइए सुनते हैं 19वें पाठ की बातचीत।
2: अनो सुमिमासेन तेबुक्रो गा होशी देसु गा।
3: 手袋はこちらです。これ、あったかそう。いいですね。
2: これ、いくらですか?

0: 1900円です。
1: カードは使えますか？
0: はい、使えます。
2: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
3: पहले ताम ने दुकानदार से कहा,
4: अनो, すみません।
2: माफ कीजिए।
4: टेबुक्रो गा होशीन देस गा।
2: दस्ताने चाहिए।
3: दुकानदार ने जवाब दिया,
0: टेबुक्रो वा कोचिरा देस।
3: दस्ताने यहाँ हैं।
2: फिर मिया ने दस्तानों की एक जोड़ी दिखाते हुए कहा,
5: कोरे अत्तकसो।
2: ये गर्म लगते हैं।
3: ताम ने दस्ताने पहन कर देखे।
4: ई देस ने।
2: अच्छे हैं।
4: कोरे इकुरा देस का?
2: ये कितने के हैं?
3: दुकानदार ने बताया,
0: 1900 येन देस।
3: 1900 येन के।
2: फिर ताम ने पूछा,
4: कार्ड वा त्स्काएमास का?
2: कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं?
3: तो दुकानदार ने उत्तर दिया,
0: हाई त्स्काएमास।
3: जी, कर सकते हैं।
2: सर्दियों में होक्काइडो का तापमान अक्सर 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। ये दस्ताने ताम के बहुत काम आएंगे।
3: आज का मुख्य वाक्य है,
4: टेबुक्रो गा होशीन देसु गा,
3: यानी दस्ताने चाहिए। ये वाक्य याद करके आप दुकानदार को बता सकेंगे कि आप क्या खरीदना चाहते हैं।
2: इस वाक्य में
6: टेबुक्रो
2: का अर्थ है दस्ताने और
6: होशीन देसु गा
2: का मतलब है चाहिए।
3: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आपको कोई चीज खरीदनी हो और आप चाहते हो कि दुकानदार आपको वो चीज दिखाए, तो उस चीज के नाम के बाद लगाएं कारक
6: गा
3: और उसके बाद कहें
6: होशीन देसु गा। होशीन देसु गा
2: बना है ई विशेषण
6: होशी
2: यानी चाहिए के बाद
6: देसुगा
2: जोड़कर
6: देसुगा
2: का उपयोग अपनी बात समझाने और सुनने वाले से मदद का अनुरोध करने के लिए किया जाता है।
3: यहाँ तेबुक्रो यानी दस्ताने के बाद आया है गा और उसके बाद होशीन देसुगा, इसलिए वाक्य बना तेबुक्रो गा होशीन देसुगा यानी दस्ताने चाहिए।
2: तो सुनिए और दोहराइए। ध्यान रखिएगा कि वाक्य के अंतिम शब्द का सुर नीचे रखना है।
6: होशीन देसु गा। टेबुक्रो गा होशीन देसु गा।
3: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक महिला कुछ खरीदना चाहती है।
7: すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
8: そうですね。このお菓子はいかがですか?
2: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
3: पहले महिला ने पूछा,
7: すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
2: माफ कीजिए, 北海道का उपहार चाहिए।
3: का भाव है और इसका उपयोग किसी को आवाज लगाने के लिए किया जा सकता है।
6: ओमियागे
3: का अर्थ है उपहार।
2: अगर आपको समझ ना आ रहा हो कि परिजनों या मित्रों के लिए जापान से क्या उपहार लेकर जाएं, तो आप दुकानदार से ये सवाल पूछकर उनकी सलाह ले सकते हैं। तो अब सुनते हैं कि जवाब में दुकानदार ने क्या कहा।
8: सो देसु ने, कोनो ओकाशी वा इकागा देसु का?
3: अच्छा, ये मिठाई कैसी रहेगी?
2: इसमें
6: सो देसु ने
2: का अर्थ है अच्छा। इसका इस्तेमाल जवाब सोचते समय किया जाता है।
6: कोनो ओकाशी
2: का मतलब है ये मिठाई और
6: इकागा देसु
2: का अर्थ है कैसी रहेगी।
3: तो अब वाक्य सुनिए और साथ साथ बोलने का अभ्यास कीजिए।
6: ओमियागे गा होशीन देसु गा। 北海道のお土産が欲しいんですが。すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
2: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप सामान बांधने का पारंपरिक जापानी कपड़ा यानी
6: फुरोशिकी
2: खरीदना चाहते हैं, तो दुकानदार को ये कैसे बताएंगे?
9: すみません, 風呂敷が欲しいんですが.
3: अब मान लीजिए कि आप शहर में टहल रहे हैं और अचानक बारिश होने लगी. आप एक कन्वीनियंस स्टोर में चले गए और दुकानदार से ये कहना चाहते हैं कि आपको छाता चाहिए. छाते को जापानी भाषा में कहते हैं
6: कासा.
3: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए.
8: すみません, 傘が欲しいんですが.
2: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो ताम की पंक्ति है. आप भी इसे याद कर लीजिए.
4: कार्ड वा त्स्काएमास्का?
6: कार्ड वा त्स्काएमास्का
3: का अर्थ है कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं.
2: इसमें
6: कार्ड
2: का मतलब है क्रेडिट कार्ड. पूरे शब्द का उच्चारण है
6: क्रेडिटो कार्डो.
2: आप अपना कार्ड दिखाते हुए ये भी कह सकते हैं
6: कोनो कार्डो वा त्स्काएमास्का,
2: यानी इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं.
3: तो आप भी ये वाक्य बोलने का अभ्यास कर लीजिए.
6: कार्डो वा त्स्काएमास्का.
2: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं.
4: すみません。手袋が欲しいんですが。
0: 手袋はこちらです。
5: これ、あったかそう。
4: いいですね。これ、いくらですか
0: ?1900 円です。
4: カードは使えますか？
0: はい、使えます。
3: अब सुनिए हारू जी की सलाह, जिसमें हम आज बात करेंगे जापान में क्रेडिट कार्ड के उपयोग की.
2: जापान में आप होटलों, डिपार्टमेंट स्टोरों और ऑनलाइन खरीदारी में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी दुकानें ऐसी भी हैं जहां इन्हें स्वीकार नहीं किया जाता.
3: हालांकि इन दिनों क्रेडिट कार्ड और कैशलेस यानी नकद रहित भुगतान करने के तरीके आम होते जा रहे हैं, मगर कम आबादी वाले क्षेत्रों में बहुत सारी छोटी दुकानें और अन्य सुविधाएं केवल नकदी ही लेती हैं, जिससे विदेशी पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
2: वैसे क्रेडिट कार्ड स्वीकार करने वाली दुकानों की संख्या बढ़ रही है. कुछ ऐसे एटीएम भी हैं जिनसे आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके जापानी येन निकाल सकते हैं. आमतौर पर डाकघरों और कन्वीनियंस स्टोरों में एटीएम होते हैं और उनमें विदेशी कार्ड भी चलते हैं.
3: फिर भी जापान में घूमते समय नकदी साथ रखना अच्छा है. ये जानकारी भी पहले से इकट्ठा कर लेना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड का उपयोग कहाँ हो सकता है और कहाँ नहीं.
2: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा.
3: अगले पाठ में ताम अपने दोस्तों के साथ होक्काइडो जाएंगी. तब तक के लिए सायोनारा.

ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब कुछ मजीद खबरें। ईरान के मरहूम रहबरे आला आयतुल्ला अली खामनाई के तीन बेटों ने इतवार को दारुलहुकूमत तेहरान में उनकी आखिरी रसूमात के दूसरे दिन शिरकत की, लेकिन ज़राए इब्लाग के इदारों ने उनके बेटे मुश्तबा खामनाई के बारे में कोई खबर नहीं दी, जो अपने वालिद के बाद मुल्की रहबरे आला

0: और इलाकाई अमनो इस्तेहकाम की हिफाजत करना है। वजारत ने कहा कि मशक के बाद दोनों अतराफ की कुछ अफवाज बहरुल काहिल के मुतल्लिका इलाकों में मुश्तरका समंदरी गश्त करेंगी। सरकारी शिनहुआ न्यूज एजेंसी का कहना है कि मशक में हिस्सा लेने वाले जहाजों में चीन के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और एक आबदोस के अलावा एक रूसी गाइडेड मिसाइल क्रूजर और एक आबदोस शामिल हैं। दोनों फरीक दूसरे तरबियती मंजरनामों के अलावा मुश्तरका जासूसी मिसाइल दिफा और मैरीटाइम स्ट्राइक ऑप्शंस माफ कीजिएगा ऑपरेशंस करेंगे। दोनों अतराफ के अहलकार मुतल्लिका बहरी जहाजों के दौरों का भी एहतमाम करेंगे। दोनों ममालिक 2012 से तकरीबन हर साल मुश्तरका मशकें करते आए हैं। इतवार के रोज वस्ती जापान के शिजुओका प्रीफेक्चर के एक गर्म चश्मा तफरी शहर इतो में मौसम गर्मा के आगाज के एक मुनफरिद इवेंट वॉश टब रेस का इनेकाद किया गया। ये इवेंट हर साल तकरीबन इन्हीं दिनों दरियाए इतो ओकावा पर मुनक़िद होता है। रेस में मकामी अफराद और सयाहों समेत तकरीबन 270 अफराद ने हिस्सा लिया। कुछ शुरका ने आम मलबूसात पहने हुए थे जबकि दीगर मौसम गर्मा के किमोनों में मलबूस थे जिसे युकाता कहा जाता है। तकरीबन 1 मीटर कुतर के टबों में बैठे हुए शुरका इब्तदाई इशारा मिलने पर रवाना हुए और चावल के बड़े पतीलों से मिलते जुलते टबों को लकड़ी के बड़े चप्पुओं के साथ चलाते हुए 400 मीटर नीचे की तरफ फिनिश लाइन तक गए। जब कुछ शुरका अपना तवाजुन खो बैठे और उलट गए फिर अपने टबों में वापस चढ़ने के लिए जिद्दोजहद करते रहे तो तमाशाइयों ने उन्हें दाद दी।
1: अब आज की चंद अहम खबरों की सुर्खियां समाप्त फरमा लीजिए। जापान के महकमे मौसमियात का कहना है कि मौसमी बारिशों के एक ठहरे हुए निजाम के बायस पीर के रोज शुमाली क्यूशो में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी रहा। वेनेजुएला की हुकूमत का कहना है कि 24 जून को मुल्क में आए दो शदीद जल्जलों के बाद से अब तक 3,000 से ज्यादा अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। जापान के खलाई तहकीक के मिशन हायाबुसा 2 ने खला में अपनी अगली मंजिल की तरफ जाते हुए एक सियारचे का दोहराने परवाज मुशाहिदा मुकम्मल कर लिया है। एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और वीडियोस के लिए हमारी वेबसाइट है nhk.jp/urdu।

0: らですか？
1: ये कितने के हैं?
2: दुकानदार जवाब देता है,
3: 1900 円です。
1: 1900円के हैं।
2: ताम पूछती है,
0: कार्ड は使えますか?
1: क्या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया जा सकता है?
2: दुकानदार जवाब देता है,
3: हाय, 使えます。
1: जी हाँ, इस्तेमाल किया जा सकता है।
2: होक्काइडो में सर्दियों के मौसम में दर्जा हरारत अक्सर 0°C से नीचे चला जाता है। ताम ने गर्म दस्ताने खरीद कर बहुत अच्छा किया।
1: तो आइए आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं।
0: すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
4: これ、あったかそう。
0: いいですね。これ、いくらですか
3: ?1900 円です。
0: カードは使えますか?
3: はい、使えます。
2: आज के सबक का कलीदी जुमला है, मुझे दस्ताने चाहिए।
0: तेबुकुरो गा होशीन देसु गा।
2: अगर आप इस अंदाज को याद कर लें तो इसे कोई भी चीज खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: तेबुकुरो यानी दस्ताने और होशीन देसु गा के मायनी है चाहिए। अब आज का नुक्ता, जब आप कोई चीज खरीदने जाएं और चाहते हैं कि दुकानदार वो चीज दिखाए तो उस चीज के नाम के बाद गा और उसके बाद होशीन देसगा लगाएं। होशीन देसगा ई इसमें सिफत होशी यानी चाहिए के बाद न देसगा लगाकर बनाया गया है। न देसगा अपनी बात की वजाहत के साथ साथ इस बात का इशारा है कि आप मुखातिब से किसी जवाब की तवक्को रखते हैं।
2: तो मकालमे की सूरत हाल में थेबुकरो यानी दस्तानों के बाद गा और फिर होशीन देसगा यानी चाहिए लगाकर बनाया गया है। थेबुकरो गा होशीन देसगा यानी एक तरह से ताम दुकानदार से कह रही है कि मुझे दस्ताने दिखाएं, ऐसा ही है ना?
1: जी बिल्कुल ऐसा ही है।
2: तो सामीन सुनिए और दोहराइए जुमले के आखिर में लहजा धीमा कर लेना बेहतर तासुर देगा।
5: होशीन देसु गा। तेबुकुरो गा होशीन देसु गा। तेबुकुरो गा होशीन देसु गा।
2: जी सामीन, यकीनन आपने जुमलों को उम्दगी से दोहरा लिया होगा।
1: और अब एक दुकान में ग्राहक और दुकानदार के दरमियान होने वाला मकालमा सुनिए।
6: すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
7: そうですね。このお菓子はいかがですか？
1: अब इस मकालमे की तशरीह।
6: すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
2: वो माफ कीजिएगा, मुझे होक्काइडो की सौगात चाहिए।
1: आनो ये किसी को मुतवज्जे करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला लफ्ज़ है। ओमियागे के मायने है किसी इलाके की सौगात। अगर आपको समझ ना आ रही हो कि सफर के मकाम से क्या तोहफा ले जाएं, तो दुकानदार से ये जुमला कहना बेहतर होगा।
7: सो दिस ने कोनो ओकाशी वा इकागा देसु का।
2: अच्छा, इस मिठाई के बारे में क्या ख्याल है?
1: सो दिस ने ये अक्सर कोई मुनासिब जवाब सोचने के दौरान कहा जाता है। कोनो ओकाशी यानी ये मिठाई और इकागा देसु का किसी चीज़ की सिफारिश के लिए कहा जाता है, यानी ये चीज़ कैसी रहेगी या इस चीज़ के बारे में क्या ख्याल है।
2: तो सुनिए और दोहराइए।
5: ओमियागे गा होशीन देसु गा। होक्काइडो नो ओमियागे गा होशीन देसु गा। आनो सुमिमासेन। होक्काइडो नो ओमियागे गा होशीन देसु गा।
2: उम्मीद है आपने अच्छी तरह मश्क कर ली होगी।
1: अब इसी अंदाज की कुछ और मशकें। फर्ज करें आप गठड़ी बांधने वाला रिवायती जापानी रुमाल खरीदना चाहते हैं, तो दुकानदार से ये बात किस तरह कहेंगे? जापान के उस रिवायती बड़े रुमाल को कहते हैं
5: फुरोशिकी। फुरोशिकी।
0: आनो सुमिमासेन। फुरोशिकी गा होशीन देसु गा। आनो सुमिमासेन। फुरोशिकी गा होशीन देसु गा।
1: और अगर आपको छतरी चाहिए तो दुकानदार से कैसे कहेंगे? छतरी की जापानी है
5: कासा। कासा।
8: आनो सुमिमासेन। कासा गा होशीन देसु गा। आनो सुमिमासेन। कासा गा होशीन देसु गा।
1: और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर। آج کا جملہ مکالمے میں تام نے دکاندار کو ادائیگی کے وقت استعمال کیا ہے، اسے اسی طرح یاد کر لیں۔
9: کا دو اتسکائے ماسکا
1: یعنی کیا کریڈٹ کارڈ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ یہاں کا دو دراصل کریجت تو کا دو یعنی کریڈٹ کارڈ کی مختصر شکل ہے۔ آپ اپنے پاس موجود کریڈٹ کارڈ دکھا کر یوں بھی پوچھ سکتے ہیں، کونو کا دو اتسکائے ماسکا یعنی کیا یہ کریڈٹ کارڈ استعمال کیا جا سکتا ہے۔
2: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے۔ جی سامعین، اب آپ کی باری ہے، تو سنیے اور دہرائیے۔
1: اور اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں، اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں تام اس چیز کے بارے میں بتاتی ہے جو وہ خریدنا چاہتی ہے۔
10: 手袋が欲しいんですが。手袋はこちらです。これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか？1900円です。カードは使えますか？はい、使えます。
11: ハルさんの知恵袋。
2: اب ہاروسان کی زنبیل کا کارنر۔ آج کا موضوع ہے جاپان میں کریڈٹ کارڈز کا استعمال۔
1: ہیرا، آپ خریداری کے لیے کریڈٹ کارڈ استعمال کرتی ہیں؟
2: ہاں جی، اکثر کرتی ہوں کیونکہ اسے کافی آسانی رہتی ہے۔ اسے جاپان میں اکثر ہوٹلوں، ریستورانوں اور اسٹوروں میں کارڈ کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یقیناً آن لائن شاپنگ میں بھی۔ لیکن بعض دکانوں میں کارڈ استعمال نہ کیا جا سکنے پر مجھے حیرت ہوتی ہے۔
1: ویسے تو جاپان میں اب کریڈٹ کارڈ اور ادائیگی کے دیگر ذرائع کا استعمال کافی عام ہے، لیکن بعض جگہوں پر خصوصاً دیہی علاقوں وغیرہ میں صرف نقد رقم سے ادائیگی ہی ممکن ہوتی ہے۔
2: غیر ملکی سیاحوں کے لیے یہ کوئی خوش آئند صورتحال نہیں۔
1: جی، آپ کی بات درست ہے، لیکن جاپان میں اب ایسی دکانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے جہاں کریڈٹ کارڈ وغیرہ کے ذریعے یعنی نقدی کے بغیر ادائیگی ممکن ہے۔ بعض اے ٹی ایم مشینوں سے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے جاپانی کرنسی ین میں نقد رقم بھی نکلوائی جا سکتی ہے۔ ڈاک خانوں یا کنوینئنس اسٹورز میں اے ٹی ایم عام ہیں، اور اکثر میں بیرون ملک جاری کردہ کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا ممکن ہے۔
2: ویسے کہیں جانے سے پیشتر یہ چیک کر لینا بہتر ہوگا کہ کہاں کریڈٹ کارڈ استعمال کیا جا سکتا ہے اور کہاں نہیں۔
1: یقیناً، اور بیرون ملک سفر کی صورت میں کچھ نقد رقم تو لازماً ساتھ رکھنی ہی چاہیے۔